आकाशवाणी दीपू स्टेशन अलोंगपेन पिनियासार लामथे रोयथुले थाटल एमेना ले मेते पेरथे तामे माते कहिनो आबे लामथे केमान मुनिरतुम आंगबों कामाथा पेनाज लाहिन लाहिन काचे सरसा लापेन काचे लांगसेले दोक लापेन मानिया फांता मुनित हेनो पुसे पुदाम्पो बनता नांगलीजों से बांगाफान था किजुनुता पुपेदेत लोते नांगली फांता नांगकीपुआ बांग आवेलो लासे अफ्रांके एमेना से मेसे नांगजिला आनलोते पीरथे आदांग अमुनित पेंता मेराप सेन पो पुआफान लासे सारपालाम थेलो एमेना ले मेते पीरथे तामे माते कहिनो अवे पिनिया सारलाम थेके लापानिक पेनलो नांगली तुम जाय में कर्ज लोंग बोमला के आकाशवाणी डिपो स्टेशन अलोंग पैन।

காசன் சீசன் சாரலோங்கே நாங்கு ஆலாம் தே.

Si asen hangrin ti punang jualam di tangdiru kasen.

Me carpo marli, laslo samso chorpi, ral ruka sen longki.

করপো মারলি কে নং কোলা চি ফং সেং মে যে।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया।

चाय में 800 1 लौंग चाहिए। नॉन स्टूडियो घुरिया पोर भाई ट्रक्सी रामिनेट प्ले कैब अपर प्लें टांगल लासीन ना दुंठू कार्बिलुन चेटो आंग डें अलोंग पेन अप्रांसी अलून आर्चु इक सेना मोहन सिंह हांसे लपेन आरिया सांग हो अटुम किलोन अलून अलोन अलम थे चिकिमो जी नांग फान पीनी सैमसन सिंह इंटी पुआलोन जिर आर्चु इक सेना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य

0: यह योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
1: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
0: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
3: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती

0: देने का रास्ता चुना है।
1: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
2: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
1: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से रहिए जहां भी हों, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
3: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसा आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: लापाना पर्णा लितुम सोनू निगम लापेन कविता कृष्णा मोठी किलोनालुन आर्जुक लंगटांगल आदुंथुआलुन आर्जुक सेना लता मंगेशकर लापेन शैलेंद्रा किलोनालुन आलोना लामथे चाबी खो जाई लबांगसो आलोना लामारजान लाके बोबी आलामारजान लंगपेन लापेन लबांगसो आलोना लामथे किटक लाके लक्ष्मीकान प्यारेलाल किटक आलोन आर्जुक सेना लबांगसो आलोन
1: बाहर से

लपानापर्णा लितुम के एस चित्रा लपेन शंकर महादेवान किलोनालुन आर्जिक लंगतांग आदुंथुआलुन आर्जिक सेना उदित नारायण लपेन लता मंगेशकर किलोनालुन आलुना लामथे हमको हामी से चुरालो लबांगसो आलुना लामार्जान लके महाबाटे अलामार्जान लंगपेन तांगटे आर्जिक सेना लबांगसो आलुना।

0: चेराबदु नंगजी गर्ल्स एजुकेशन कोआन माकेनांग सोट तमे इलितुम अवेयरनेस देंगपोन नांगपो आठे अनुतिन स्वर्लो सितामे क्वालिटी एजुकेशन केलोंग नंगजी अफान के डिजर्व लो लसी इलितुम कद्दू कवे चेरापेन नॉन एप्रांग स्वर्लो तुम भंडा एजुकेशन कांगथुर पेन काथे आंग काय लोंग के पद दुदुंजी अफानसी साइक्लेम पोना कार्डो
1: लापाना पोर्णंग लितुम लामजी रंग देंग अलोंग प्रोमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन इन रूरल एरियाज मते सोआरलो आतोमाफान रोंग रूबारलो सोआरलो आतोमाफान के चार्ली अनाथ अप्रांग कोपुसोन से के पफ्रांग पोंथेक जिमा फुथा चिनथोंग इंटी के थाना लामजीर आरजी लोंग तांगलो लाके आकाशवाणी दीपो नॉन स्टूडियो घुरियापोर पोरफाई कैबरा मिनिट हम कैब अपोर चौकजी डॉक डॉक लो लसीनांग लितुम दिल्ली पेन कपाचिता हाईलाइट्स ऑफ द 20 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स आलमजीर अजय मेघ आरजू इकलोंगपो

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहां मौजूद है धर्मेंद्र और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 बजे की लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और श्रीलंका आज है इस वक्त आमने सामने इन द सेमीफाइनल क्लैश। एंड इंडिया वॉज ऑब्वियसली पुट इन टू बैट फर्स्ट टूडे। जी हाँ, एंड बल्लेबाजी करते हुए भारत ने आज शुरुआती दौर में ही बहुत जल्दी अपने दो विकेट्स, इम्पॉर्टेंट विकेट्स, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का गवा दिया वेरी अर्ली ऑन। एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड ड्रिलिंग इन एट 24 for 2। लेकिन देन वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा का पूरा, एक तरह से कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू हेल्प इंडिया सम हाउ सस्टेन themselves एंड पुट themselves इन अ कमांडिंग पोजिशन। एंड वैभव सूर्यवंशी देन वॉज एबल टू लीड इंडिया टूवर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट इनिंग्स, वेरी हिट 20 गेंदों में 38 रन्स, विच इंक्लूड्स 6 फोर्स इन 2 सिक्सेस एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 190, thereby helping India somehow stabilize themselves at 59 runs for the loss of 2 wickets. But as I say this,

0: वैभव सूर्यवंशी ऑल्सो हैज नाउ गॉटन आउट. जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी गॉट आउट एंड ही वॉज कॉट बाय सुनीत जयवर्धना. एज अ रिजल्ट इंडिया नाउ आर 59 for 3 इन जस्ट 6.2 ओवर्स. धर्मेंद्र, अ लॉट नीड्स टू बी सीन एज टू हाउ द इंडियन इनिंग्स विल डेवलप इन द स्टिपुलेटेड 20 ओवर्स.
1: जी हाँ, लेकिन तीरंदाजी से तो मिली जुली खबर आ रही है. पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका सामना कुछ ही देर में दक्षिण कोरिया के किम जोंग हो से होगा. गणेश मणिरत्नम ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई के ची लुनचेन को 148-138 के अंतर से हराया. गणेश ने इस मुकाबले में सिर्फ 2 अंक गवाए. स्कोर 29-28, 29-28, 30-29, 30-26 और 30-27 रहा. हालांकि चिकिता तनिवार थी, क्वार्टर फाइनल में हार गई और एक जो मेडल की उम्मीद उनसे थी वो पूरी नहीं हो सकी. काफी नजदीकी मुकाबला रहा और इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अशरीफा ने उन्हें हराया. और तीरंदाजी में ये जो खबर रही, ये मिली जुली खबर है.
0: जी, और जूडो की दुनिया से आपको कुछ खबर दे देते हैं, जहां यामिनी मौर्य क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स 57 किलोग्राम्स कैटेगरी क्वार्टर फाइनल इन जूडो. लेकिन क्वार्टर फाइनल से आगे जीत पाने के बाद जब वो आगे गई तो वहां पर हमने देखा कि यामिनी मौर्य लॉस्ट वुमेन्स 57 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अरियुन जया तरबिश बाई यूको. एंड दूसरी तरफ अब बात करते हैं कि शी देन मूव्ड इनटू द रेपेचार्ज वेयर शी वुड बी फेसिंग जापान्स मियो श्रीकाने फॉर अ प्लेस इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच. दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमने देखा कि इनुनगन भी तकलबाम एडवांस टू द वुमेन 70 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर बीटिंग नेपाल्स पूनम श्रेष्ठ बाय इपो. शी विल टेक ऑन नॉर्थ कोरियाज मून सॉन्ग हुई नेक्स्ट.
1: और शूटिंग से अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी है. अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है. हालांकि अनीश क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद उनसे पदक की उम्मीद साक्षी तो बनी हुई है.
0: जी, और कयाक की दुनिया से भी आपको कुछ खबरें दे देते हैं, जहां पर इंडिया शिखा चौहान हैज बुक्ड अ प्लेस इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 10th इन द सेमीफाइनल्स. शिखा क्लॉक 246.16 सेकंड्स टू सिक्योर अ स्पॉट इन द फाइनल व्हिच विल बी बिगिनिंग शॉर्टली एट अराउंड 10:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हिच शुड बी से दैट द मैच इज ऑल सेट टू हैपन नाउ.
1: और टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से पराजित हो गए हैं. स्कोर 4-6, 4-6 रहा. हालांकि सुमित ने वापसी की भरपूर कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन भारी साबित हुए यिबिंग वू और उन्होंने इस जीत के साथ टेनिस में भारत की जो दमदार चुनौती हुआ करती थी उस पर पानी फेर दिया और टेनिस में भारत की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं.
0: जी, और सेलिंग की दुनिया से आज सुबह आई सबसे बड़ी खबर भारत के लिए, जहां इंडिया सिक्योर द फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुर्सिनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट. इंडिया प्रिंस कुर्सिनिकल नोबल एंड मनु फ्रांसिस क्लेम द सिल्वर. द इंडियन पेयर फिनिश सेकेंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स. इंडिया रिकॉर्डेड 2 रेस wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China went on to claim the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: और ताइक्वांडो में भारत की रूपा बायूर महिला व्यक्तिगत पुंसे के सेमीफाइनल में 7.6100 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही. वे फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं. पुंसे में हम आपको बता दें कि खिलाड़ी अकेले कई मूवमेंट का प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी प्रतिद्वंदी से मुकाबला नहीं होता. प्रदर्शन का आकलन सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है.
0: जी, एंड जस्ट बिफोर वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू आल्सो वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल एज ऑफ नाउ. भारत के पास इस समय कुल 62 मेडल्स हो चुके हैं. भारत इस समय मेडल टेबल में 8वें स्थान पर है विद अ टोटल ऑफ 62 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 10 गोल्ड 22 सिल्वर 30 ब्रॉन्ज. दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट आफ्टर 10:30 AM फॉर ऑल योर लवली पीपल. हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे सुबह 11:30 बजे. फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत. थैंक यू, गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

हिंदुस्तान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए

भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारी छाप। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल नरेश परेश का संगीत, और ये गीत हम सुनवा रहे हैं आवारगी एल्बम से।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में जान इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, निखिल विनय का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुषि। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: हलचल हुई, हलचल हुई।

0: आजा नचले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत, फिल्म जाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ आपने सुना। सुजाता फिल्म के इस गीत में आवाज आशा भोसले और साथियों की। आज गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन की जन्म जयंती है और उन्हीं के मिले जुले गीत आपको इस कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों को हम आपको सुनवाने वाले हैं।

नौ दो ग्यारह फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर यादों की महफिल। आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है और रात 8 बजे हवा महल में सुनेंगे झलकी अंगारे, लेखन सोमनाथ नागर का, निर्देशन सत्येंद्र सरत का। और इस वक्त कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके गीतों के जरिए।

0: கரகை பாகல் மோய், கரகை பாகல் மோய், கரகை பாகல் மோய். மெரது மெரது மெரது.
1: அரே
2: बात एक रात की, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
6: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना फिल्म गाइड से। शैलेंद्र ने इसे लिखा। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
4: माझी

सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे बंदिनी फिल्म से। इसे लिखा शैलेंद्र ने। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनकी जन्म जयंती पर।

0: इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना।
1: अय्या,

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं

विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल आज याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जन्म जयंती पर और उन्हीं के गीतों के जरिए यादों की महफिल कार्यक्रम आज गुलजार है। आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अनामिका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है

0: हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आराधना फिल्म से गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीत आपको सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में रोजाना करते हैं कि एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। तो आज की इबारत आपको पहले सुना देते हैं। आज की इबारत है, उम्र का क्या है बढ़ती जाती है और ये दिल दिल तो बच्चा ही रहता है। तुम भले 60 के हो या 55 के, कहाँ भूलते हैं दिन बचपन के। वैसे बचपन ही क्यों, जवानी प्रेम प्यार एक दूसरे से मिलने की हर घड़ी भी तो उन महकती यादों के साथ ही है जो हमने साथ साथ चलते हुए गुजारी है। कुछ भी कहो, इन चांदी से चमकते बालों में जो नरमी है वो बादलों में भी नहीं। तुम्हारे मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवां बनाने का हुनर रखते हैं। वैसे हम भी कम नहीं, आज भी जिस गली से निकल जाएं, हसीनाएं जान छिड़कती हैं आहें भरती हैं। पर क्या करें, तेरे चेहरे से नजर हटे तो कुछ देखें। उम्र की ये ढलती शाम भी तेरी जुल्फ के साए में बितानी है, ना इसके सिवा कुछ चाहा ना इससे बढ़कर ये जिंदगानी है। तो ये हमारी आज की इबारत है जिसमें बहुत से ऐसे शब्द छुपे हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही एक थीम भी इसमें छुपी हुई है जो हमारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचानी। वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं हमारे साथियों को और हमारे साथियों ने उम्र को लेकर बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं

कि गूगल का जमाना तो अब आया, पुराने जमाने का असली गूगल अगर कोई है तो वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन ही हैं, जिनके पास अनुभवों का खजाना होता है। पुराने जमाने में कोई अच्छे कार्य शुभारंभ करने से पहले या विकट परिस्थितियों में निकलने के लिए उनकी सलाह ली जाती थी। इस बात पर गुजराती मुहावरा भी है, गेड़ा गाड़ा वारे, यानी मतलब दलदल में फंसी बैलगाड़ी हो या जीवन रूपी गाड़ी हो, बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुभव से बाहर निकाल सकता है। तो इन्होंने वरिष्ठ श्रोताओं को और वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सभी छोटे बड़े मित्रों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप भी हमें भेजिएगा बहुत सी बातें। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि उम्र कैलेंडर की तारीखों से नहीं, स्वयं के नजरिए से बढ़ती है। शरीर भले 55-60 का हिसाब रखने लगा है, पर दिल ने घड़ी पहनना सीखा ही नहीं। वो आज भी उसी आंगन में कूदता है जहां बचपन में कूदता था, उसी गली में खड़ा है जहां पहली बार धड़कनें तेज हुई थी। लेकिन ढलती उम्र के साथ जब बालों में सफेदी आती है तो बढ़ती उम्र की निशानी नहीं होती, बल्कि जीवन में मिले अनुभवों का प्रमाण पत्र होती है। और दिल का बचपना मिजाज इस बात का सबूत है कि आपने अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने उस बचपने और जवानी को जिंदा रखा हुआ है। जो तो आज कोई भी गीत सुनकर जो मुस्कुरा देता है, जहाँ जीवन की ढलती शाम भी किसी नए सवेरे से ज्यादा हसीन लगती है। भाई बेहतरीन बातें आप लिख भेजते हैं, कोई भी विषय हो, लेकिन ये भी तो बताइए कि उम्र को आप किस तरह से देखते हैं। क्या कोई ऐसे काम है जिन्हें आप अब नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करने की अब उम्र नहीं रही? बताइए हमसे। और साथ ही बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसे लिखा किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है।

0: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में। तो विविध भारती के जश्न में तो आप सभी शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आज हम वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर कुछ उम्र की बातें कर रहे हैं। हमारे साथी कह रहे कि उम्र तो जीवन के मौन यौन परक शैशव बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध और अति वृद्ध जैसे विभिन्न पड़ावों का एक स्वरूप मात्र है। इसमें किशोरावस्था को उस मौन यौन परक रवानी की तीव्रता अपने नियत सुर लय ताल जैसे दर से मृत्यु पर्यंत नृत्य कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक बचपन था, आंगन में नंगे पांव दौड़ते हुए छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते हुए बिना किसी चिंता के शाम तक खेलते हुए एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पूरा बचपन एक सुंदर सपना लगने लगा। और शायद यही तो सफर है, बचपन की मासूमियत से उम्र की समझदारी तक, काले बालों की रवानी से चांदी की कहानी तक, और दूसरों के लिए जीते जीते एक दिन अपने ही भीतर लौट आने तक। मगर सच कहें तो यादों में आज भी वही बच्चा कहीं मुस्कुरा रहा है। वाकई अपने अंदर अगर बचपन जीवंत है तो बहुत सी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कल की ही बात हो। हमारे एक और साथी कहने कि वक्त का पंछी बचपन और यौवन के पड़ावों से उड़ते हुए आखिरकार बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुंचता है। ढलती उम्र में प्रगल्भता और अनुभव का साथ बुजुर्ग इंसान को अधिक समर्थ बना देता है, साथ ही साथ खुद के भीतर उत्साह से भरे बचपन को जिंदा रखना, इसी में उसका बड़प्पन है, सुख समृद्धि है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन दिवस की अनेक शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को, क्योंकि अगर हमारे बहुत से श्रोता वरिष्ठ नागरिक हैं भी और बहुत से नहीं भी हैं, लेकिन उनके आसपास तो जरूर वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हमें ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा किस काम के लिए टोका जाता है और उन्हें वो टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो ये हमें बताइए आप। और साथ ही ये भी बताइए कि जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम क्या है, और ये भी बताइए कि आपके लिस्ट में क्या ये गीत शामिल था।
3: क्या
4: हम जब होंगे 60 साल के

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत आपने सुना सुजाता फिल्म के इस गीत में। यही हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने बिल्कुल सही बताया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।

कल आज और कल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ तक कि आपने तो सारे जवाब हमें दिए हैं कि किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ है और शैली शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। यहाँ तक कि आपने ये भी लिख भेजा कि रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और बबीता इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के युवकों को हम 60 प्लस वालों के विचार अच्छे नहीं लगते, ना ही उन्हें हमारी सलाह उनके मन को भाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर इस दिन शुभकामनाएं सिर्फ ना दें बल्कि अपने वरिष्ठों को समय दें, उनकी बातें सुने, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि किसी घर में बुजुर्गों की मौजूदगी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि उस घर की स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वादों की छांव होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ करना चाहते पर देखो ना, जैसा पहले दौड़ते थे अब नहीं दौड़ पाते, और हाँ रस्सी भी तो नहीं कूद पाते। पर जो नहीं कर पाते वो क्यों सोचें, जो कर पाते हैं क्यों ना उससे खुश हों। तो हम वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घर के सभी काम कर लेते हैं, अगर सहायिका ना आए तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। वैसे अब हम वरिष्ठ नहीं हैं अभी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं याददाश्त के बारे में, यानी कि वो कह रहे कि याददाश्त के बारे में टोका जाता है जो बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक था बचपन, ये जो गीत है लता जी का गाया हुआ, इसमें बचपन पूरा समाया हुआ है। बचपन को याद करते हुए करते हैं तो एक सुकून सुखद एहसास होता है, लेकिन जब बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा गाड़ी में सवार हुए बहुत से यात्री सफर बीच में ही छोड़ गए, उनकी यादों की गठरी बांधे हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि अक्सर ये गीत हम जब होंगे 60 साल के, मैं अपनी धनपत्नी को सुनाता हूं और कहता हूं बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की, तो धनपत्नी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती और मेरे से पूछती है और आप, मैं कहता हूं कोई शक, हम तो हंसते ही हैं साथ में बच्चे भी मुस्कुराते हैं। क्या ही बेहतरीन बात आपने कही। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से साथियों ने बताया कि ये गीत उनकी लिस्ट में तो शामिल था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांदी से चमकते बाल किसी को अच्छे नहीं लगते, फौरन काले कर लेते हैं। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या आप अपने चांदी से चमकते बालों के अनुभवों को सबको दिखाते हैं? चलिए हमें और एक बात जो याद आई जो आपसे पूछनी है वो ये कि क्या बचपन की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी याद है जो आपके मन में अब भी ऐसे ताजा है जैसे कल की ही बात हो? तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किस पर फिल्माया गया है, यानी जो पर्दे पर नजर आते हैं वो।

0: वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में। हमने पूछा था पर्दे पर कौन नजर आते हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बलराज साहनी और अचला सचदेव।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: हमारे साथी कह रहे हैं बहुत सी बातें, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने चांदी जैसे बालों को कलर कर लेते हैं पर उम्र छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी को बनाए रखने के लिए। उम्र तो हम इस धाक

साथ बताते हैं कि देखो इस उम्र में भी हम कितने एक्टिव और अपडेटेड हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बाल तो 50 पर सफेद हो गए, लेकिन आज तक हमने कभी डाई नहीं करवाया, अब तो 72 पहुंच गए। तमाम मौकों पर लोगों ने बाल काला करा लीजिए सलाह दी, लेकिन मैंने कहा कि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक नहीं कई सारी शरारतें जिनमें पुरानी मिठास हो, बारिश होती ही छत पर जाकर भीगना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं घूमने निकल जाना और लौट कर ऐसे बनना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी की आंखों पर हाथ रखकर पूछना कि बताओ मैं कौन, गली में खेलते खेलते हार जाए तो कहना चलो एक आखिरी बार और, बिना किसी वजह के जोर से हंसना और फिर दूसरों को भी हंसा देना। ये बचपन की ऐसी बातें हैं जो इन्हें याद आती हैं जैसे कि कल की ही बात हो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज विश्व वृद्ध जन दिवस है, गीत जब हम होंगे 60 साल के, ये गीत तो इनकी पसंद पर और बहुत से साथियों की पसंद पर चल ही चुका है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि किस बातों पर टोका जाता है वरिष्ठ नागरिकों को, जो हमने पूछा उस पर वे कहने की बहुत बोलते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, इस बात पर वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर टोका जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लगातार टोका जाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा आप बाहर मत निकलो ये बात उन्हें कही जाती है, तब अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं, क्यों जब हम 60-70 वर्ष के हो जाते हैं तब उनमें भी बचपन आ जाता है, जब वो बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है, मेरी समझ ऐसी है। उनका ऐसा कहना हमारे साथी का बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब बचपन का एक दौर वापस आ जाता है जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है वो इसलिए क्योंकि कभी कभी कहीं गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, उससे चिंतित रहने की वजह से लोग घर के जो लोग हैं परिवार के सदस्य हैं वो मना करते हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है, लेकिन इसमें दोनों ही किसी तरह से उलझ जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कहने की उम्र भले ही गणित के अंकों की तरह बढ़ती रहती है, लेकिन मन यादों के गलियारों में कुछ कुछ बचपन थोड़ा थोड़ा यौवन काल रहता ही है, अवस्था तो गतिशील है और अंतकरण बाल सुलभ रहता है, बाल्यकाल जीवन का स्वर्णिम सोपान होता है, इस अवस्था से जुड़ी जो यादें हैं वो बचपन की उम्र के बाद के लिए किसी राजशाही खजाने की जैसी होती है, यौवन की अवस्था की यादें भी कम हंसी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में बहुधा जीविका के संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ, थोड़ा कठिन दौर रहा करता है, फिर बचपन के बाद की अवस्था बालों में आई रजत सफेदी उम्र के बढ़ जाने का एहसास तो कराती ही है, लेकिन उसमें जो कोमलता है वो बादलों में भी नहीं होती, जो प्रेम की परिपक्वता जीवन से जुड़े अनुभव के साथ बुद्धिमत्ता के भी द्योतक होती है, इस उम्र में बाल सुलभ बन यादों के पिटारे से कुछ न कुछ निकालने में लगा रहता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर आज की इबारत बनाई गई है, शायद आज सीनियर सिटीजनशिप की सीनियर सिटीजन को धन्यवाद दे रहे हैं वो इस दिवस की, और कुछ यादें कुछ गीत इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। देखना है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट कितनी मैच करती है आज। तो अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं, आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत हमने चुना है, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और अपनी उम्र को मात देते हैं, ये हमें बताइए।

0: सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है उम्र की। हमारे साथियों ने जो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गीत की कौन सी फिल्म का है हमने आपसे पूछा था, जब प्यार किसी से होता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे एक मित्र कह रहे हैं 100 साल तो नहीं मगर 25 साल जरूर हो गए प्यार करते करते। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र को मात नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो आनी ही आनी है, लेकिन कार्यकुशल होना एक अलग बात है और उसके लिए सभी अपने आप को बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रायः तैयार ही रखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन दिल तो जवान होता है और जवान ही रहना चाहिए हर वक्त। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सफेद बालों से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किंतु हम उम्र लोग भी अंकल कहने लगते हैं तब बालों को काला करने का विचार आता है। भाई ये जो अंकल कहने की जो एक प्रथा है, अंकल और आंटी कहने की, ये बड़ी ही कह सकते हैं कि एक अजीब सी परंपरा है क्योंकि कई बार लोग हम उम्र को भी अंकल या आंटी कह देते हैं या कई बार वो अपने से छोटों को भी कह देते हैं इस तरह से, तो ये संबोधन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 100 साल पहले मतलब 1926 से 2026 में भी प्यार जारी है। भाई ये तो आपका एक चुटिला अंदाज है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो मानती हूँ कि घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो तो एक चीज जो मुख्य तौर पर बनी रहती है वो है अनुशासन। व्रत त्योहार उनके होने से कुछ और ही चमक लिए होते हैं। ये संचार क्रांति का दौर है। मेरी मम्मी ने अभी हाल ही में स्मार्टफोन खरीदा और उन्होंने मोबाइल चलाना सीखा भी है, जैसे बचपन में खींच कर ले गया। कैसे वे एक एक अक्षर बड़े धीरज से सीखती थी, सिखाती थी। आज उसी धीरज की जरूरत हम सबको है और यही धीरज धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो धैर्य धके और अपना बचपन याद करें, बुजुर्गों की हर बात सुने और समझें। हमारे एक साथी ने यही बात कही है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल के बारे में एक से ज्यादा बार पूछने पर बच्चे झुंझला जाते हैं, तब हमें याद आता है कि उनका बचपन जब हम एक सवाल का जवाब

अब 50 बार देते थे। घर के जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को लेकर एक बात अक्सर कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, कहते हैं कि जब तुम उस दौर में जाओगे जब हम उस दौर पे थे, यानी माता पिता बनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने तुम्हें किस तरह से पाला है। तो क्या आपको भी ये बात सुनने मिलती है, किस तरह से, हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि न कल की चिंता थी ना आज का गम, कितने खुश मिजाज हुआ करते थे हम, बेशक पैसा कम था लेकिन बचपन में दम था। उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है लेकिन प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे लोग भी हैं जो शान से कहते हैं कि बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं, और अपने आप को खेलकूद और मनोरंजन में व्यस्त रखते हैं। फिर भी हमारी जिंदगी की किताब में सबसे बेहतरीन चैप्टर बचपन होता है। वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ दिल बड़ा होता जाता है और उसके अंदर नए नए रिश्ते और दोस्त, नई नई रुचियां और शौक शामिल होती जाती हैं। जब हम बचपन में थे, यानी वो कह रहे जब हम यंग थे, तब हमारे पेन फ्रेंड हुआ करते थे और अब रेडियो फ्रेंड और वॉइस फ्रेंड हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से भी हम अलग-अलग तरीके से खुद को देख सकते हैं, ढाल सकते हैं। और अब आप ये सुन सकते हैं एक गीत जिसे हम आपको सुनवाने वाले हैं, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है आपसे पूछते हैं यही सवाल, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस बात के लिए टोका जाता है और आपने किस बात के लिए सबको सबसे ज्यादा टोका है।

है कि आज के युवा भले ही इलेक्ट्रॉनिक युग में पैदा हुए हैं और उनके प्यार का ढंग भी एआई से प्रभावित हो रहा है। घर के बुजुर्गों का प्यार देखें, उनके आगे ये मॉडर्न प्यार बिल्कुल टिकता नहीं। जरा सी देर में गुटरगू और जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। हम बुजुर्गों में कैसा सामंजस्य था, भले भरा पूरा परिवार था, लेकिन हमारी श्रीमती जी के साथ चाय पीने, खाने और सोने में कभी कोताही नहीं करती थी। कहीं जाना भी हो तो साथ में भी जाती, अकेले जाने नहीं देती थी। इतना प्यार जवानी में कहाँ था, तब इतनी परवाह कहाँ थी। बस हम कमाने में लगे थे और वे घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती थीं। अफसोस, साल भर पहले हमें छोड़ गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन का वो मौज मस्ती और बेफिक्री का दौर, बचपन के सुनहरे दिन होते हैं, और वो दौर के बाद जैसे जैसे कदम जवानी की ओर बढ़ते हैं तो अंदर उत्साह और जोश का संचार होता है। यही जोश और उत्साह भविष्य को संवारने में मदद करता है और युवावस्था से सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। फिर इस जिम्मेदारी को निभाते वे हमको वरिष्ठ होने तक निभानी पड़ती है जिम्मेदारियां। हमारे जीवन के इन तीनों पड़ावों में सबसे सुनहरा दौर बचपन का होता है, जो कभी लौट कर नहीं आता। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि हम भी सीनियर हैं, पर फिर भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे टोकना नहीं पड़ता, पर वो लोग हर बात पर टोकते हैं, खाने पीने में और रोका टोकी करना, डांटना। वैसे कई बार हम ये भी होता है कि सीनियर सिटीजन वाकई बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, और जिन चीजों की उन्हें मनाही होती है वो जब वो खाने लगते हैं तो फिर घर के बच्चों को तो टोकना ही पड़ता है, ना माने तो थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। तो ये भी आप देखिए कि अगर आपकी सेहत के लिए या आपके भले के लिए टोका जा रहा है तो वहां आपको थोड़ा खुद भी समझना पड़ेगा और अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि घर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जिनकी वृद्धि होती है वही वृद्धजन कहलाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कैसे आज की इबारत में बताया कि समय के साथ शरीर तो ढलता है लेकिन प्रेम और आत्मा बूढ़े नहीं होते, और उम्र की तीनों अवस्थाओं को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय एक ही धागे में उन्हें पिरोया गया है। जहां बचपन यादों में है, जवानी दिल की धड़कन में, और बुढ़ापा इन दोनों के अनुभवों को समेटे हुए एक शांत सुखद ढलती शाम का आनंद ले रहा है। भाषा शैली काव्यात्मक, रोमांटिक और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भरी हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन दिल में बचपन की मासूमियत और जवानी की खूबसूरत यादें हमेशा बनी रहती है। प्रेम और प्यार में बिताई हुई हर मुलाकात, हर पल की यादें जीवन को महका देती है। चांदी से बालों में भी वही अपनापन, मीठे बोलों में वही मिठास और धड़कनों में वही चाहत रहती है। उम्र की इस ढलती शाम में किसी अपने का चेहरा, उसकी नजर और जुल्फ का साया साथ हो तो जिंदगी आज भी खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम ये गीत आपको सुनवाते हैं, और आपको ये पहचानना है कि किसने इस गीत को लिखा है।

नौनिहाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बोल किसके हैं यही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन डे पर सलाम है हमारे उन एवरग्रीन रॉक स्टार्स को, जिनके चांदी से चमकते बालों में बादलों जैसी नरमी है और जिनके मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवान बना देते हैं। ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि पापा का नया स्मार्टफोन सीखना हो या मम्मी की पुरानी सहेलियों संग गपशप, इनकी जिंदगी की ढलती शाम भी किसी सुरीले सफर से कम नहीं। तो आज अपने घर के इन एवरग्रीन बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनका पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और उनके तजुर्बों को एक जादू की झप्पी दीजिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा। हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। एक ओर बचपन हमें पुस्तकों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जवानी हमें संघर्ष और सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान का बोध करवाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन का सफर महकती यादों का सफरनामा है, जिसमें खूबसूरत यादों के साथ जीवन का अनुभव होता है, जो किस्से कहानियों के रूप में बयान होता है। हर किस्सा कोई ना कोई सबक दे जाता है। उम्र एक पड़ाव है, जिंदगी तो बस जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कितने मौसम बीत गए हैं, बालों में चांदी उधर आई पर मन के रंग लाल पीले हैं। लोग भले ही कहे कि उम्र ढल रही है, पर हम तो कहते हैं कि उम्र की शाम सुहानी है, हम दोनों का साथ है अगर तो हर दिन एक नई कहानी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि आज की भारत में गीत पहचानने में उन्हें उलझन हुई, लेकिन कुछ गीत उन्होंने पहचाने और हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जो भी गीत हैं वो सारे शामिल हो चुके हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये जीवन का चक्र है। बचपन की शरारतें जीवन के, जवानी की मीठे पल, दो दिलों का टकराना बुढ़ापे में, उन सुनहरे पल को याद करना, शरीर जरूर कमजोर हो जाता है पर दिल हमेशा जवान रहता है। हमें इस जज्बात में जीना है, जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानवर्धक विविध भारती है, जो मेरे पिताजी ने सुनी, मेरे दादाजी ने सुनी, परिवार ने सुनी, अभी मैं सुन रहा हूँ, अब आने वाला कल मेरे बच्चे सुनेंगे। तो सबसे बड़े विविध भारती की ये वरिष्ठ उद्घोषक है, जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुढ़ापा अजीब है, हमारे दादा दादी एक दिन नहीं जाता जब झगड़ा नहीं करते हों, लेकिन एक पल एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। दादी को अगर दादाजी खाना ठीक से न खाए तो खुद भी ठीक से नहीं खाती हैं। उनको एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो एक वक्त के बाद ये दोनों आपस में एक सोल की तरह बन जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की ये रचना शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है कि शरीर भले ही उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, पर मन और भावनाएं हमेशा तरोताजा रहती हैं। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के प्रेम और मुलाकातों तक हर पल की यादें बुढ़ापे में जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही अभी 26 की है, पर दिल सदियों पुराना प्यार समझता है। तुम्हारे मीठे बोलों पर ये दिल आज भी हद से ज्यादा धड़कता है। वैसे तो नजरें फिराने को हंसी चेहरे बहुत हैं इस महफिल में, पर क्या करें, ये दिल तो सिर्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में ठहरता है। भाई क्या बात है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का

0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती के जश्न में तो आपका इंतजार रहेगा ही, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस घर के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी पहले महत्वपूर्ण होता है और ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर हम भी बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। वही हमारे एक साथी कह रही है, मैं तो सीनियर सिटीजन में आ गई हूं पर मैं अभी भी बच्चों की तरह ही सोचती हूं।

मेरा अपने से छोटों में मन लगता है। मैं अपने आप से ही फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और भी साइट्स देखती रहती हूँ। विविध भारती में भी एक्टिव हूँ, फेसबुक के कई म्यूजिक ग्रुप पर भी एक्टिव हूँ। तो इसी तरह से अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उम्र का जो असर है, उम्र की जो भी ऐसा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बिल्कुल दूर होती चली जाती हैं। और आपको देखकर हम तो बस यही कहेंगे, जो गीत कहने वाला है आपके लिए, फिल्म का नाम बताइएगा।

0: नजर नहीं हट।
1: कभी कभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब तक हम अपने मन को बच्चे जैसा रखते हैं तब तक हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ही अच्छा संदेश, और इस संदेश के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध

0: After losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final, India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का

0: भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक

0: मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मित मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मित मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मित मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार

0: निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: देवियां फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्म का मानशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें।

0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों के बाद

0: ही सहेली।
1: नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा।
2: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
1: बिल्कुल। और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना।
2: और इतने सारे दिन लेकर आए
1: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी।
2: हाँ,
1: तो हम लेकिन बीच बीच में, बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए, ताकि जो हमारे श्रोता है, जो सुन रहे हैं, वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सके। तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। और साथ ही क्या लेकर आए हैं?
2: मुझे कुछ कहना है, हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू, हमने कहा था इस विषय पर कुछ, तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल। हाँ, किस तरह से हो,
1: कैसे करनी चाहिए, कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है।
2: हाँ,
1: बस कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है, बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है, उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना?
2: देखिए, आते ही
1: संगीत,
2: आते
1: क्योंकि
2: आते
1: संगीत का दिन है ना, तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया
2: बात। तो कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं
1: हाँ
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी, क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं जरा बताइए तो, सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना,
0: हाँ,
1: बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो है शाकाहार दिवस,
0: हाँ
1: यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं माफ
0: हाँ
1: कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया
0: हाँ
1: बढ़िया। वैसे तो शाकाहार में फल
0: फल
1: भी
0: भी
1: आता
0: खा
1: है,
0: सकते हैं।
1: सब्जियां आती
0: हाँ,
1: हैं, सब कुछ आता
0: जब
1: है।
0: उपवास करते हैं तो बस
1: हाँ,
0: फलाहार बोल
1: फल
0: बोल के जो
1: खाते हैं।
0: खाते हैं हम।
1: हाँ, वो फलाहार भी वही है,
0: जी
1: तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया।
0: हाँ
1: और हमारा खून भी बढ़ाती हैं, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती हैं, तेज करती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाए, और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से, जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी। वैसे
0: ये क्यों
1: तुम्हें क्या
0: पूछ रहे हैं
1: पसंद
0: आप,
1: है?
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ
1: देखो,
0: गई?
1: एक तो शाकाहार दिवस है,
0: हाँ हाँ
1: समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं।
0: समझ तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है, तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे तब।
1: बिल्कुल, आप लोग भी बताइए आपको क्या
0: हाँ,
1: पसंद है, चाय की कॉफी?
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी
1: बिल्कुल
0: मिलेगी
1: बिल्कुल।
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा। जी
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है,
0: जी
1: तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है ना।
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें कर रहे हैं, शाकाहारी जिन्हों खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं शाकाहारी।

0: शाकाहारी तो सब होते हैं क्योंकि सभी एक नए
1: शाकाहार के साथ में
0: कुछ कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है शाकाहारियों की इनकी थाली को देखकर सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है। तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात कर सकते कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज हम कोई भारी भरकम से आपको भाषण नहीं देने वाले हैं कि हाँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको जिस कलर की जिस रंग की सब्जी पसंद है आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिए खाने के समय भाषण सुनना ऐसे ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रख और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें उसको आनंद उठाएं उस पकौड़ों का। तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका आज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोलवाला?
0: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है। कहते कि क्या बनेगा ते पनीर, कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई आ रहा है तो भी पनीर, कोई नहीं आ रहा है तो भी पनीर,
0: और बहुत दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर। तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की। तो पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग रूपों में
1: हरा भरा भी पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी। भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप में ही है क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे ही रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है, तो बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल, और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं फ्रूट होते हैं और ये सब्जियां होती हैं शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाने तो पनीर चला ही चला जा रहा है बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं और बहुत से आवश्यकता अनुसार कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं, तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू खाना है।
1: लौकी को ही नेहा अगर हम दाल में चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
0: हाँ, तो वही तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती थी तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना,
1: लौकी का कोफ्ता, वाह क्या बात।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
1: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए
1: क्योंकि थोड़ा हटे वहां से
0: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाए।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे,
1: बिल्कुल,
0: शायद
1: सबको
0: देख सकते
1: इंतजार
0: हैं,
1: होगा
0: या लाइव सुनना तो सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो
0: जी
1: कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है।
0: जी
1: और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है। और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला हैं, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म। और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
0: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और उसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें

0: कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: बहुत बड़ी बात है ये
0: जी।
1: उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
0: जी, तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
1: बिल्कुल, और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की।
0: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
1: बिल्कुल, लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
0: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
1: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थीं।
0: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
1: यही सबसे बड़ी बात है कि अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
1: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
1: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। अच्छा। हमें तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं है।
4: नहीं, सभी तो को आलू पसंद है, सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी
5: बिल्कुल, क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना, उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है। फिर क्या हुआ, वो रह गई।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नेहा।
4: हाँ।
5: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल। और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
5: सबके साथ।
4: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए, कि हम सबके साथ
5: हो जाए
4: और अकेले

0: हमें खाया जा सके, यानी हाँ. खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में हाँ. और सबके साथ मिलकर भी चल सके. लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना. खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन पनीर का टेस्ट बढ़ जाता है.
1: वो तो है नहीं है, लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना. आलू को बैगन के साथ भी खा सकते हैं.
0: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं.
1: बिल्कुल, आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो. ऐसी सब्जियां जिनके साथ नहीं, पनीर नहीं खा सकते, उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है.
0: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल
1: लेते हैं.

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है, अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया हो हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
0: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हम हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
1: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो, कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे, लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
0: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है बल्कि महसूस होता है, याद बनता है, और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं, या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग रागों से संबंधित

0: अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जिससे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके।
0: हाँ
1: तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूँ, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूँ। पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि केएल सहगल, पंकज मलिक, सीएच आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है। आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी के लिए संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें संग। और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी
1: अच्छा
0: यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत ही हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है।
1: अरे
0: हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, बल्कि मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
0: वाह क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत भी
1: एक
0: सुन लिया
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: गीत जब दो सुनना ही चाहिए।
0: जी।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। इसे सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
4: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भी भाषा को उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
3: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना। संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर
5: लापोन अपोर्णांग लितुम मुंबई पेन का पचतक विविध भारतीय जैमेक अर्जुलोंग इक्तांगलो लाखी आकाशवाणी डिपू नॉन स्टूडियो अपोर पोरफाइगे थोमरा मिनिट टिकेब्रा फोपलेंग दापो लसी गुवाहाटी पेन का पचतक कर्बिया जैमेक नांग लितुम अर्जुलोंग इक्पू।

United Nation Pen ki thik ke the age of longevity mate achithe kechepading lapente achithe kechepading mate pirthe ke do dun arni kepading aphan puthot ke matha United Nation International Day of Older Person aning kangrang ta phri achikloni phai siarni ketalon karcho athepi ke pirthe dangarat akesara tumpen के क्लेम काम अपुठाक मान पेंग की पी लपेन अलांग लितुंग अपान केराप की पी हेलो।

चरणम

Hello.

روان

Lorenzo.

हाई मुए जां आए पीरथे हाचे वां पीरथे

จ้าลองเอลองกรอมจ้า

चरणम् ऐशराथम् एजुदेराचरणम् ओलं एलं क्रंजा

0: 2026 आईटी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू एट दिस आवर। घड़ी में बज रहे 2:30, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ हैं यहाँ पर धर्मेंद्र। सबसे पहले खुशखबरी के साथ इस अपडेट की शुरुआत करते हैं कि स्क्वॉश में इंडिया हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल। येस, यू हर्ड मी राइट ओवर देयर, द इंडियन टीम हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द स्क्वॉश इवेंट। हमने देखा कि वी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन चंद्रन इन

0: the deciding match of the men's team semi-final between India and Malaysia. V. Senthil Kumar won the opening game 12. Malaysia's Amishan Raj hit back to take the next three games 11-6, 11-8, 11-9. In the same event, we saw in the earlier matches that Malaysia took the early lead, jahan India lost the opening match of the men's team semi-final with Abhay Singh going down 0-3 to Ian Yong. The Malaysian won all three games 11-8, 11-8, 11-8 in just 27 minutes, giving Malaysia an early 1-0 lead. Then we saw Veer Chautrani helping India make a recovery back into the second match, thereby the scores 1-1 because Veer Chautrani beat Sanjay Jiwa 3-0. And finally, we saw that V. Senthil Kumar went down to lose the game, and as a result, India had to settle in with the bronze.
1: उधर कुश्ती से भी अच्छी खबर है. भारत के नितेश सिवाच ने पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको-रोमन वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया है. उन्हें फाइनल में जापान के यूरी नाकाजातो ने फाइनल में 4-0 से हराया और गोल्ड अपने नाम किया. नाकाजातो ने मुकाबले में 4-0 की बढ़त बनाई. नितेश ने पिन से बचाव किया लेकिन जापानी पहलवान ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया. नाकाजातो ने मैच की रफ्तार अपने नियंत्रण में रखी और गोल्ड जीता. और इस सिल्वर के साथ भारतीय कुश्ती दल ने अपने अभियान की शुरुआत पदकों के साथ कर दी है. लेकिन ग्रीको-रोमन रेसलिंग में एशियन गेम्स गोल्ड के लिए भारत का इंतजार जारी रहा. हम आपको बताएं कि 64 साल बाद कोई भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचा था और 1962 में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था. लेकिन उधर अलावर बात करें, वो महिलाओं की 62 किलोग्राम भार वर्ग में पदक से चूक गए. रेपेचार में मानसी अहलावत का मुकाबला मंगोलिया के पहलवान से था. आते ही जब मैट पर वो आई 2-0 से पिछड़ गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की, 2-2 की बराबरी भी की, लेकिन अंतिम कुछ सेकेंड्स में अपने नियंत्रण में इस मुकाबले को नहीं रख सकी और 2 अंक गंवाए, जिसकी वजह से उनको ये मुकाबला मानसी अहलावत को 2-4 से गंवाना पड़ा.
0: Right, in the world of golf, India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after 2 rounds, carding 11 under 129 to set 2 strokes behind leader Shannon Juan Yin Tan of Singapore. Vahin Deeksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are presently third in the team standings behind China and Singapore.
1: और उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के में जगह बना ली है. अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई. गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे फाइनल मैच के विजेता से होगा. भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी. इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया. 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था. फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी और भारत के लिए गोल किया हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर. फिर उन्होंने 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया. सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल किया. अभिषेक ने 60वें मिनट में गोल किया. पाकिस्तान के लिए अबू महमूद ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया. हन्नान शाहिद ने 45वें मिनट में गोल किया. वहीद राणा ने 49वें मिनट में गोल किया और इस तरह से ये मुकाबला भारत ने अपने नाम 4-3 से कर लिया.
0: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम रग्बी सेवन्स, वेयर इंडियन वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मर्दनी, संध्या राय, मामा नायक, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे टीम हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द 2026 एशियन गेम्स, सफरिंग 2 हैवी डिपीट्स इन पूल बी, पूल ई इन सम क्लासिफिकेशंस एट द पलोमा मिजू रग्बी स्टेडियम. मैच 1 इंडिया एंड हांगकांग दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग, इंडिया फिनिश्ड एट 7 पॉइंट्स वाइल हांगकांग एट 33 पॉइंट्स. And then the match 2, India lost to China 5-43. A tough day for Indian women's rugby sevens team.
1: और मेडल टैली पर भी एक निगाह अगर डालें तो भारत अभी भी 8वें स्थान पर है. 10 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक, 22 रजत पदक और 32 कांस्य पदकों के साथ कुल 64 पदक जीतकर भारत इस समय मेडल टैली में 8वें स्थान पर है.
0: That is all that we had. इस अपडेट में आप सबके लिए फिलहाल के लिए साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत. हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे दोस्तों शाम के 6:30 बजे विद द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. गुड बाय फॉर नाउ.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
2: लकी आकाशवाणी दीपू जयमे केवांग लके एफएम बेनालोंग पेन मेघर्स फरोसी रतक बरा सिरकेप लपेन अनपार्टा न्यूज ऑन एयर एप लपेन रेस एप अलोंग पेंता नांगदी तुम जयमे दोन तारजुलोंग इजी अदुंथु पिनिया सारलम थे अर्जुक था एमिना लिमिते पिरथे तमी मते कहे नुआवी लामथे किमान मोनी द तुमांगबोंग कमाथा पेना जोक लाहिन लाहिन काचे सोरसार लपेन काचे लांगसलेत दुको लापेन मानिया फानता मुनित हेनु पुसी पुदाम्पो बोनता नांगली जोंसी बांगा फान थांगा किजु नोता पुपेदेत लते नांगली फानता नांगी पु बांगा विलो लासिया फ्रांगे एमेना सी मिसेन नांगजिलांग आनलोते पिरथिया दांग अमोनित पेंता मिरापसेन पोपुआ फान लासी सार पलाम थेलो एमेना ली बेते पिरथे तमे मते आके हेनुआवे पिनिया सार लाम थे की लापान वेतलो

वर्षाकी मि छु एन्दुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन कपचे थांगा वर्षाइदो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंगजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसोना सोनालाम पचे थांगनांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंगहुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजोंग सी चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो।

Anserligen ser mig mosin kring por mig ansar pin på habi.

0: बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

아든 투 부터 주빈걸 킬로날론 아르주익스낭 알루날람 테 아폰 부리 자케 바부 더당 테 아르주익스낭 라방살론.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और

0: का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
5: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
6: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
7: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित।

0: करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
1: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
2: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
5: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
6: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
7: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
5: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से

0: करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई।

0: की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाउ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के एमटीएसएच लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Machar for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump have also hailed Smith Machar as a hero who averted a big tragedy. Mr. Netanyahu thanked Captain Smith Machar for saving the lives of 174 people on